गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि आरजे अदनान का आपके साथ साथ है। ठंडी हवा चेहरा छू कर गुजर रही है और पंछियों की चहचहाट जैसे हर प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बना रही है। जिंदगी की भागदौड़ हम अक्सर इन छोटी छोटी चीजों में मिस कर देते हैं, लेकिन यही छोटी बातें हमें असली सुकून देती है। सोचिए, एक कप गर्म चाय, सुबह की ताजा हवा और अपने मन को बस थोड़ी चुपचाप सी जगह, यही तो होती है असली मेडिटेशन। दोस्तों, हर सुबह ना तो हमें एक नया मौका देती है को रिसेट करने का, कुछ अच्छा सोचने का और अपने दिल को बेहतर बनाने का। तो आज सुबह बस एक वादा कीजिए कि अपने दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, शुक्रगुजारी से करेंगे। याद रखिए, वह बाहर नहीं मिलती, ये हमारे अंदर ही है, बस उसे महसूस करते आना चाहिए। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे दिन को मुस्कान के साथ जीते हैं, क्योंकि आज तो मुस्कान की चमकान चेहरे पर होगी, क्योंकि आज है शनिवार यानी कि सैटरडे। और सैटरडे का दिन ना तो एकदम रिलैक्स वाला होता ही है, उन लोगों के लिए भी जिनको छुट्टी होती है और उन लोगों के लिए भी जिनका जो ऑफिस होता है, क्योंकि अपने आप वो वर्कलोड कम नजर आ ही जाता है। कुछ देर के बाद लौट कर आता हूं मैं आज का दिन स्पेशल क्यों है ये बताने के लिए #दिनविशेष में। सो तब तक के लिए कहीं मत जाना, एंजॉय करना आने वाले सुपर हिट गाने और मुस्कान की चमकान एकदम अभी जैसे आपके चेहरे पर आ रही है ना, ऐसी बरकरार रखना। बहुत क्यूट लगते हो आप मुस्कुराते हुए। सो

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल alumni नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति
3: फोटो येईल पेपरा मंदी, अगं खरं सांगतोया फोटो येईल पेपरा मंदी, नाव गाजल जगा मंदी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। दोस्तों, गांधी जी कहते थे, सत्य और अहिंसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार की बात है, गांधी जी के आश्रम में एक छोटा सा लड़का आया। उसने गलती से आश्रम का एक बर्तन तोड़ दिया। डर के मारे वो भागने ही वाला था, लेकिन फिर उसे गांधी जी की बात याद आई। सच बोलने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। लड़का हिम्मत करके गांधी जी के पास गया और बोला, बापू, मुझसे गलती हो गई, मैंने बर्तन तोड़ दिया। गांधी जी मुस्कुराए और कहा, बर्तन टूटने का दुख नहीं है, खुशी इस बात की है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई। उस दिन उस बच्चे को समझ आया, सच बोलना और किसी को नुकसान न पहुंचाना, यही असली ताकत होती है। तो दोस्तों, जिंदगी में रास्ते कई मिलेंगे, लेकिन अगर साथ में सत्य और अहिंसा हो तो मंजिल हमेशा सही होगी। तो इसीलिए हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलिए। यही महात्मा गांधी जी का संदेश था और यही आज की मोटिवेशन कहानी थी।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: माझे तुझ्या मनभर सरीवर सर सरीवर सर सरीवर सर सर सर सर सरीवर सर सरीवर सर।
1: दोस्तों गर्मी शुरू हो चुकी है और इस मौसम में एक छोटी सी गलती आपको बीमार बना सकती है। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, ये बहुत ज्यादा होती है। आप सुन रहे हो MTM 90.8 FM और जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो थकान, चक्कर, सर दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। तो बचना कैसे है? सबसे पहले पानी ज्यादा पीजिए, प्यास लगे तभी नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। दूसरा, बाहर निकलते समय नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ जैसी नेचुरल ड्रिंक साथ ले ले। तीसरा, सबसे ज्यादा धूप में जाने से बचे और अगर जाना ही है तो टोपी या छाता जरूर यूज करें। और एक जरूरी बात, चाय, कॉफी और बहुत ज्यादा मीठी ड्रिंक्स कम पीजिएगा क्योंकि ये अपने शरीर को और जल्दी डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो दोस्तों इस गर्मी में खुद का ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि याद रखिए अगर शरीर में पानी रहेगा तभी एनर्जी बढ़ती रहेगी। यही लाइफ मंत्र याद रखिए और मुस्कान की चमकान के साथ हेल्दी लाइफ जिए। और

0: जब तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तब तक चेहरे पर मुस्कान ओरिजिनल नहीं दिखेंगी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। सो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है अभी डॉक्टर मानसी करसगांवकर, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी एंड लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, मेरा सवाल आज आपसे ये है, सो मैम, जिस इंसान को डिप्रेशन है तो वो इसमें से बाहर कैसे निकल सकता है?
1: देखिए, सेल्फ अवेयरनेस तो जरूरी है, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहा है दैट मीन्स कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रमाण थोड़ा कम है। इन दैट केस सबसे पहले आता है फैमिली और फ्रेंड्स, जो लोग नियर एंड डियर वंस हैं उन लोगों के, उनका अवेयरनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हों जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए, तो दे नीड टू बी गुड लिसनर्स। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनका इंटेंशन जरूर अच्छा होता है, लेकिन वो अनोइंगली अनइंटेंशनली ऐसे कुछ चीजें बोल देते हैं जो कि द पेशेंट विद डिप्रेशन इज नॉट येट रेडी टू रिसीव। ऐसा भी होता है कि बस उनको एक्सप्रेस करना होता है पेशेंट्स को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन सामने वाले सजेशंस देने लग जाते हैं। तो ये एक चीज है जो हम सब ने रिफ्रेन करनी चाहिए। एंड देन द पेशेंट नीड्स टू टॉक टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। एंड ये भी याद रखिए, मतलब अगर किसी को डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो रहे हो तो खुद को आइसोलेट मत करना। जैसे ही फील होने लग गए कि मुझे किसी से नहीं बात करने का मन कर रहा है, तो जरूर आप थोड़ी देर मत बात करना, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चिंतन मनन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना खुद में, एंड देन गो आउट देयर एंड ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई टू टॉक टू योर फैमिली ऑल्सो।

0: दोस्तों आरजे अदनान आपके साथ है, मेरे मुसाफिर के साथी हो, कैसे हो आप लोग, एकदम मस्त।
1: All is well, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाई रेडियो का फ्लो,
0: ऑन MGM 90.8 FM। इसे अभी वक्त हो चुका है अपनी फरमाइशें पूरी करने का। तो आज गाने की फरमाइश आई है

जवाब गाने की फरमाइश की है और फरमाइश करने वाले का नाम है कपिल काळे। सो कपिल काळे जी की फरमाइश पर ये गाना आज हम एंजॉय करने वाले हो। बाय द वे मित्रांनो, जर तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर बिंदास्त हमारा व्हाट्सअप करा 9359320080 या व्हाट्सअप नंबर वर। लाजू नका, बिंदास्त कॉल करा, फरमाइश पूर्ण करा आणि ऐकत रहा।

सारी दुनिया स्मार्ट हो रही है लेकिन अपनी एमएसईबी कब स्मार्ट होगी पता ही नहीं, लेकिन मीटर के लिए स्मार्ट हो रही है, बाकी काम बस स्लो चल रहा है। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सिटी अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई साहब, आपके घर पर लाइट है कि इस वक्त या कल लाइट थी? आजकल ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने छत्रपति संभाजीनगर में एक ही है, वो है बत्ती गुल वाला। कल भी मैंने इस पर बात किया था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बात क्या है ना, हर दिन शहर के बहुत सारे एरियाज की बत्ती गुल हो रही है। एक तो गर्मी का मौसम है और इस मौसम में बत्ती गुल हो गई मतलब शरीर से आत्मा बाहर निकल आएगी, इतनी परेशानी होती है। आणि कसं आहे ना, महावितरण म्हणतं की आम्ही आता स्मार्ट झालेलो आहोत, स्मार्ट मीटर्स आम्ही बसवणार आहोत और स्मार्ट मीटर ना कंपल्सरी किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि एमएसईबी स्मार्ट कब होगी और स्मार्ट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी हमारे घर तक। हर दिन 2 से 3 घंटे 4 घंटे लाइट चली जाती है और उसके बाद क्या है, कॉल करते हैं एमएससीबी ऑफिस में, सबसे पहले वहां के जो एम्प्लॉयज है कॉल उठाते ही नहीं है, बिल्कुल कॉल का रिस्पांस नहीं करते हैं। टोल फ्री नंबर भी है जिस पर हमने कॉल करे तो 1 दबाइए 2 दबाइए 4 दबाइए ऐसा करना पड़ता है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद सामने कॉल लगता है और उसके बाद कहा जाता है कि जल्द से जल्द लाइट आएगी। एमएससीबी मानती है कि स्मार्ट मीटर कंपलसरी आए, पर प्रश्न हाच आहे की तुम्ही कधी स्मार्ट पद्धतीने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करणार? और ये बस एक ही चीज में स्मार्ट काम करते, लाइट बिल पे करने में थोड़ी सी देरी हो गई तो आप तुरंत लाइट काट देते अपने घर की, बट चलता है चलने दो, बल्कि बस चल ही रहा है। स्मार्ट बनाना है ना एमएससीबी को तो सबसे पहले स्मार्ट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, वो तो आपसे होगा नहीं। खैर स्टे ट्यून्ड।

0: 1973 मधला दुष्काळ माहिती आहे तुम्हाला? माझ्या जनरेशनच्या लोकांना तर माहित नसेल, पण तुम्ही याबद्दलच्या अनेक गोष्टी ऐकल्या असतील. तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM. घर पर दादा दादी जब बात करते कुछ पुरानी बातें निकलती है ना, तब 1973 के सूखे की बात तो आ ही जाती है. और उस वक्त ना तो अपने शहर में इतना पानी का प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वक्त मंत्री थे डॉक्टर रफीक जकीरिया. यानी जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत 700 मिलीमीटर ची पाइपलाइन टाकून शहरात पाणी आणलं होतं 50 वर्षांपूर्वी. आणि तेव्हापासून आजपर्यंत या जलवाहिनीच्या माध्यमातून आपल्या शहराला पाणी मिळत आहे. बट वक्त के साथ ना तो कुछ चीजें बदल जाती है और ये पाइपलाइन अब छोटी हो रही थी, तो फाइनली डिसाइड किया गया है कि 17 मई को ये पूरी तरीके से पाइपलाइन बंद होने वाली है. और 900 मिलीमीटर की पाइपलाइन बनाई गई है अपने शहर में 200 करोड़ रुपए खर्च करके, वो शुरू होने वाली है. इसके जरिए ना तो पूरे शहरवासियों को प्रॉपर तरीके से पानी मिलने वाला है. मतलब 50 साल से जो पाइपलाइन हमारे शहर को पानी प्रोवाइड कर रही थी, अब वक्त आ गया उससे अलविदा कहने का और नई पाइपलाइन के जरिए अब शहर में पानी मिलने वाला है. सो एक थैंक्स टू डॉक्टर रफीक जकीरिया, इनको बताइए, इन्हीं की वजह से पिछले 50 साल से अपने शहर की प्यास बुझ रही है. और वक्त के साथ शहर अपना डेवलप होते गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो इसी वजह से ये न्यू पाइपलाइन बनाई गई है जो कि 18 मई से शुरू होगी और हर एक घर में प्रॉपर तरीके से वक्त पर पानी आएगा. अब ये देखा जाएगा कि सच में 18 मई से आएगा या और ये पोस्टपोन होगा, क्योंकि पिछले बार भी तो दो तीन बार ऐसा ही हो गया था. अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. स्टे ट्यून.
1: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

पिछले 2-3 दिन से एक बात आपने नोटिस की होगी कि शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है ना, तो वहाँ पर लंबी कतारें लगी है। पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर आपको लंबी लंबी कतारें नजर आएगी। किसी ने कहा होगा कि पेट्रोल की थोड़ी दिक्कत है और पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, तो इस वजह से लोग पैनिक हो गए हैं, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होते हुए नजर आ रहे। एंड गवर्नमेंट का भी कहना है कि भाई अपने देश में पेट्रोल फिलहाल बहुत अच्छे से है, आने वाले वक्त में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं भाई, पेट्रोल तो खत्म होने ही वाला है, मेरी गाड़ी तो बंद हो जाएगी, मुझे टंकी फुल करना है। और इस वजह से जो बंदा 50 रुपए का पेट्रोल डालता था वो 100 का डाल रहा है, जो 4 लीटर भरता था वो 8 लीटर भर रहा है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पेट्रोल आप अपने गाड़ियों में डाल रहे हो और बाकी लोगों को फिर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। सो भाई साहब, बहन जी, भैया जी, दादाजी, दादी जी, सभी से दरख्वास्त है, पेट्रोल अवेलेबल है, तो पैनिक होकर अफवाह पर यकीन करके एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने गाड़ियों में मत भरिएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ियों में एक्स्ट्रा पेट्रोल रहा तो दिक्कत आ सकती है, चाहिए उतना ही पेट्रोल भरिए ताकि पूरे शहर को पेट्रोल अच्छे से प्रोवाइड हो, समझे। और प्लीज अफवाह पर यकीन मत कीजिए, तो जागरूक नागरिक बनिए, समझे, और लंबी कतारें मत लगाइए, और सुनते रहिए।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM
1: साथ है तो बात है।

0: PhD करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.
3: सुनो सुनो.

0: UDICE
1: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering जिथे शिकला मुझे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होना सोच बदलो इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो अच्छा जॉब तो मिलना ही है विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784
0: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स
2: MGM University इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27 तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम
0: इफ यू आर रेडी टू टेक योर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल दिस इज योर अपॉर्च्युनिटी
2: लास्ट डेट टू अप्लाई 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM
0: साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफएम 90.8।

0: कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। इस खूबसूरत शनिवार की शाम में आपका दिल से स्वागत करती हूं। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रुकने का, मुस्कुराने का और अपने मनपसंद गानों के साथ इस शाम को भी खास बनाने का। बाहर मौसम जैसा भी हो लेकिन हमारे साथ अगले कुछ मिनटों में आपका मूड जरूर शानदार होने वाला है। वल शनिवार की शाम अपने आप में ही अलग एहसास लेकर आती है। कुछ लोगों के लिए ये आराम का समय है, कुछ के लिए ये दोस्तों के साथ परिवार के साथ हंसी मजाक का मौका है और कुछ लोग बस अपने मन पसंदीदा गानों के साथ इस पल को जीना पसंद करते हैं। तो चाहे आप घर पर हो, सफर में हो या दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हो, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आने वाले दो घंटे हम लेकर आएंगे बेहतरीन गाने, हल्की फुल्की बातें और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। और हाँ, अगर आपका कोई मन पसंदीदा गाना है या आप किसी खास इंसान को इस प्यारी सी शाम पर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमें जरूर भेजिए आपकी बातें और आपकी फरमाइशें ओनली ऑन माई इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है arjmanisha_, एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

होगा और कुछ लोग अपने अधूरे काम पूरे करने की सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, वीकेंड ऐसा होना चाहिए जो आपको अगले हफ्ते के लिए फ्रेश और पॉजिटिव महसूस कराए। अगर आपका मन काफी दिनों से किसी दोस्त को कॉल पर बात करने का कर रहा है, अगर खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए। एंड अगर बस बिना किसी प्लान के आराम करना चाहते हैं तो वो भी पूरी तरह सही है, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा प्लान कोई प्लान ना करना भी होता है। तो दोस्तों, इस वीकेंड खुद को खुश रखिए, छोटी छोटी चीजें इंजॉय कीजिए और अपने हर पल को थोड़ा खास बनाइए हमारे साथ, ओनली ऑन MG 90.8 FM साथ। तो बात है

कॉलेज वाली यादें, किसी का अधूरा प्यार, हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना आज भी बसा हुआ है। उस दौर में प्यार जताने के तरीके भी कितने प्यारे थे। किसी के लिए गाना डेडिकेट करना, डायरी में गीतों की लाइनें लिखना या चुपके से किसी का पसंदीदा गाना सुनना, छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को खास बनाती थी। और शायद यही वजह है कि आज भी जब 90s का कोई रोमांटिक गाना सुनाई देता है तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और दिल फिर से उन्हीं यादों में लौट जाता है। तो चलिए उन्हीं यादों में फिर से लौट जाते हैं। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: www.ac.in।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
0: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

देखते देखते ये खूबसूरत शनिवार की शाम अब धीरे धीरे विदा लेने लगी है और आज की इस प्यारी सी मुलाकात में आपका साथ सच में दिल को बहुत अच्छा लगा। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। शनिवार की शाम अपने साथ हमेशा एक अलग सा सुकून लेकर आती है। पूरे हफ्ते की थकान के बाद कुछ पल अपने लिए मिलते हैं, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ यादें और कुछ अच्छे गाने जो दिल को हल्का कर देते हैं। उम्मीद है कि आज का हमारा साथ, हमारी बातें और ये सुरीले गीत आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान जरूर लेकर आए होंगे। अगर आज की शाम आपके दिल को थोड़ी भी खुशी दे पाई हो तो समझे हमारा ये सफर सफल हो गया। अब कल से फिर वही जिंदगी की रफ्तार शुरू होगी, काम, जिम्मेदारियां और नए सपनों की दौड़। लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हम अपने लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालेंगे। अपनों के साथ हंसिए, खुद को खुश रखिए और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी मत भूलिए। और हाँ, अगर आज के शाम में कोई गाना, कोई बात या कोई एहसास आपके दिल को छू गया हो तो उसे अपने साथ जरूर लेकर जाइए, क्योंकि यही छोटी छोटी यादें हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, नई शाम और नई बातों के साथ। ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

सारी दुनिया स्मार्ट हो रही है लेकिन अपनी एमएसईबी कब स्मार्ट होगी पता ही नहीं, लेकिन मीटर के लिए स्मार्ट हो रही है, बाकी काम बस स्लो चल रहा है। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सिटी अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई साहब, आपके घर पर लाइट है कि इस वक्त या कल लाइट थी? आज कल ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने छत्रपति संभाजीनगर में एक ही है, वो है बत्ती गुल वाला। कल भी मैंने इस पर बात किया था, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बात क्या है ना, हर दिन शहर के बहुत सारे एरियाज की बत्ती गुल हो रही है। एक तो गर्मी का मौसम है और इस मौसम में बत्ती गुल हो गई मतलब शरीर से आत्मा बाहर निकल आएगी, इतनी परेशानी होती है। आणि कसं आहे ना, महावितरण म्हणतं की आम्ही आता स्मार्ट झालेलो आहोत, स्मार्ट मीटर्स आम्ही बसवणार आहोत और स्मार्ट मीटर ना कंपल्सरी किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि एमएसईबी स्मार्ट कब होगी और स्मार्ट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी हमारे घर तक। हर दिन 2 से 3 घंटे 4 घंटे लाइट चली जाती है और उसके बाद क्या है, कॉल करते हैं एमएसईबी ऑफिस में, सबसे पहले वहां के जो एम्प्लॉइज है कॉल उठाते ही नहीं है, बिल्कुल कॉल का रिस्पांस नहीं करते हैं। टोल फ्री नंबर भी है जिस पर हमने कॉल करे तो 1 दबाइए 2 दबाइए 4 दबाइए ऐसा करना पड़ता है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद सामने कॉल लगता है और उसके बाद कहा जाता है कि जल्द से जल्द लाइट आएगी। एमएसईबी मानती है कि स्मार्ट मीटर कंपलसरी आए, पर प्रश्न हाच आहे की तुम्ही कधी स्मार्ट पद्धतीने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करणार? और ये बस एक ही चीज में स्मार्ट काम करते, लाइट बिल पे करने में थोड़ी सी देरी हो गई तो आप तुरंत लाइट काट देते अपने घर की, बट चलता है, चलने दो, बल्कि बस चल ही रहा है। स्मार्ट बनाना है ना एमएसईबी को, तो सबसे पहले स्मार्ट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, वो तो आपसे होगा नहीं। खैर स्टे ट्यून्ड। सपने

1973 मधला दुष्काळ माहिती आहे तुम्हाला? माझ्या जनरेशनच्या लोकांना तर माहित नसेल, पण तुम्ही याबद्दलच्या अनेक गोष्टी ऐकल्या असतील. तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM. घर पर दादा दादी जब बात करते हैं, कुछ पुरानी बातें निकलती है ना, तब 1973 की सूखे की बात तो आ ही जाती है. और उस वक्त ना तो अपने शहर में इतना पानी का प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वक्त मंत्री थे डॉक्टर रफीक जकिरिया, यानी जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत 700 मिलीमीटर ची पाइपलाइन टाकून शहरात पाणी आणलं होतं 50 वर्षांपूर्वी. आणि तेव्हापासून आजपर्यंत या जलवाहिनीच्या माध्यमातून आपल्या शहराला पाणी मिळत आहे. बट वक्त के साथ ना तो कुछ चीजें बदल जाती है और ये पाइपलाइन अब छोटी हो रही थी, तो फाइनली डिसाइड किया गया है कि 17 मई को ये पूरी तरीके से पाइपलाइन बंद होने वाली है. और 900 मिलीमीटर की पाइपलाइन बनाई गई है अपने शहर में 200 करोड़ रुपए खर्च करके, वो शुरू होने वाली है. इसके जरिए ना तो पूरे शहरवासियों को प्रॉपर तरीके से पानी मिलने वाला है. मतलब 50 साल से जो पाइपलाइन हमारे शहर को पानी प्रोवाइड कर रही थी, अब वक्त आ गया उससे अलविदा कहने का और नई पाइपलाइन के जरिए अब शहर में पानी मिलने वाला है. सो एक थैंक्स टू डॉक्टर रफीक जकरिया, इनको बताइए, इन्हीं की वजह से पिछले 50 साल से अपने शहर की प्यास बुझ रही है और वक्त के साथ शहर अपना डेवलप होते गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो इसी वजह से ये न्यू पाइपलाइन बनाई गई है जो कि 18 मई से शुरू होगी और हर एक घर में प्रॉपर तरीके से वक्त पर पानी आएगा. अब ये देखा जाएगा कि सच में 18 मई से आएगा या और ये पोस्टपोन होगा, क्योंकि पिछले बार भी तो 2-3 बार ऐसा ही हो गया था. अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. स्टे ट्यून्ड.

पिछले 2-3 दिन से एक बात आपने नोटिस की होगी कि शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है ना, तो वहाँ पर लंबी कतारें लगी है। पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर आपको लंबी लंबी कतारें नजर आएगी। किसी ने कहा होगा कि पेट्रोल की थोड़ी दिक्कत है और पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, तो इस वजह से लोग पैनिक हो गए हैं, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट का भी कहना है कि भाई अपने देश में पेट्रोल फिलहाल बहुत अच्छे से है, आने वाले वक्त में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं भाई, पेट्रोल तो खत्म होने ही वाला है, मेरी गाड़ी तो बंद हो जाएगी, मुझे टंकी फुल करना है। और इस वजह से जो बंदा 50 रुपए का पेट्रोल डालता था वो 100 का डाल रहा है, जो 4 लीटर भरता था वो 8 लीटर भर रहा है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पेट्रोल आप अपने गाड़ियों में डाल रहे हो और बाकी लोगों को फिर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। सो भाई साहब, बहन जी, भैया जी, दादाजी, दादी जी, सभी से दरख्वास्त है, पेट्रोल अवेलेबल है, तो पैनिक होकर अफवाह पर यकीन करके एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने गाड़ियों में मत भरिएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ियों में एक्स्ट्रा पेट्रोल रहा तो दिक्कत आ सकती है, चाहिए उतना ही पेट्रोल भरिए ताकि पूरे शहर को पेट्रोल अच्छे से प्रोवाइड हो, समझे? और प्लीज अफवाह पर यकीन मत कीजिए, तो जागरूक नागरिक बनिए, समझे? और लंबी कतारें मत लगाइए और सुनते रहिए।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राह की दूरियां, फना हो सभी दूरियां।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGN 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से,